0: क्लास तुम क्वाफ ही
1: रेफमिसी इन फितुराना चिजाकन फावोका चिमाइची अम्ने नारन नी फिलारंबे जे चिंतुना बास फिलारंबे आराज सचापन नरोने फावे चिनेत इन फितुना नरोते फतुगुनियाल नरीटन इन अम्बर फुल्टोना रावो निदन संदालबेन फावोका अमनाल इन मार्टेस अनेचने तुकुन फनेर टेटे नरोता मनी

0: क्लास तुम कुफा भी
1: छिमी बोगे ले उलू हमारो तने लेंदा सटे माथा उछले हो ही फलो जति विरीसे ये तो ल्यारा दे आकु नेम जे छिमंदे जेम जे मुसारे के जे सटे कुमाते लुत विरीस्तु को जाय सने सटे केरे थे मुनु उलू मलाकी हम सोफ्टो ने निगो दिन ने फसाई पमारो छको ने निगो तो आकु अविलिमुरा छिलेता ले उलम जे के छिमी बोगे सटे अनसानो माथा उछले विरीसे Zezan matunga nai tarai ko mateluan virus tu di vagoga. Madagascar ngendinda fa atu yan simon tuliara musare